सुख होवै दिन राती। प्राणवात नानक हुक्म पछाणे सुख होवै दिन राती। डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर मेमंत अंकश ज्ञान रतन है

चार खंड तीन खंड पढ़ रहा मेरे इंद्रजोत सिंह ते भी भाई सिमरजीत सिंह गिल ते बराड़ परिवार गुरमेल सिंह गिल भाई रणजोत सिंह ते नैण परिवार वालों नैण परिवार ते जिहड़ा रणजोत सिंह उहने कल नूं भोग पैणे आ उपरां दीवान ते दूसरे जिहड़े दो पाठ ने उह ऐतवार नूं भोग पैणगे हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कोशिश करिया करो कदी बहि के अद्धा पौणा घंटा कितें खंड पाठ की बाणी भी सुन लिया करिए कितें बहिया करिए कदे सहज पाठ सुनिया करिए कितें बाणी सुनिया करिए बड़िया बख्शिशा बड़िया गल्लां करदा जे साडे नाल इहनां कदी गल्लां करके वेख्यो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

मात पिता हम तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने ऊचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राज श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवे ता आए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई होई सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसे सबोलो जी वाह पंजा प्यारिया चौं सब जादियां चालिया मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शहीद सिंह सिंघणिया जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई देख के अंड कीता तिन्हां गुरमु प्यारिया सचारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सबोलो जी वाह जिन्हां सिंह सिंघणियां धर्म एसी दिते बांध बांध कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विचों उबाले गए खोपरियां लुहाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते कह सहार दे शहीदों सिकिद के सांसवासां संगन भाई धर्म नहीं हारिया तिन्हां समूह शहीद सिंह सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सबोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का दे अंदर खालसे सबोलो जी वाहे प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रिचर्या देते फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले खालसे जी सबोलो जी वाहे सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झंडे भोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकर खालसे जी के बोल वाले खालसे जी सबोलो जी वाहे सिखा दा मन नीवा मात उची मादे राखे आप काल पुरख अंतर जामे गुरु जी निवास जी पातशाह पौंदे सदा सहाज दार पिता जी ओ श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारे गुरधामां तों जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणिया दे माण नताणिया दे ताणने उट्टिया दी उड़ने आसरे दे आसरे धान श्री गुरु ग्रंथ साहिब च पातशाह जी आविदा कुटान कुरशू गुराब दी पार बख्श रहमत कृपा दा सकाव दे हजूर शामां दे दीवान सजे सजे दीवाना विच आप दे हर जस होए ने कीर्तन कथा ढाडी वारां ते आदि सेवा करदिया होईआं फुल्लां बख्शड़ियां पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सरबत दा राज साध संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणा सरबत संगतां दी हाजरी तेल फुल भेटावां रस्ता आदि कीर्तन भेट माया अरदास क्राइस्ट च पातशाह सब दी हाजरी दर प्रवान करनी सेवा थाए पौनी सिर ते मेहर भरिया आतकड़ां तंदरुस्तियां बख्शणियां परिवारां विच सुख वरतौणा सरबत संगतां दे कारोबारां दी बरकतां तरों करों सिखी सिद्ध भरोसा नाम दान बख्श के निहाल करना सेवादारां नूं चढ़दी कला बणी पंथ दे सिर ते मेहर भरिया आतकड़ां इंद्र जोत गिल गुरमेल सिंह जोत गिल अते दाता जी इस तरह निजर परिवार नैन परिवारों वालों श्री खंड प्रसाद कीर्तन गुरु के लंगर की सेवा हो रही है सरबत परिवारों चढ़दियां कला बनियां सिर ते मेहर प्रयात रखना परिवारों में सुख वरतौना सेवा थाए पाउणी खुशब भावना पूरियां करनियां ऐस विदवान की समाप्ति है मेहर करो पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी सही गुरम प्यारे मेल लो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया भई अकाल की सब सिखन का हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिल बोच है
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जय साध संतन होवे इकत्तर हार तह हर जस गावे नाद कवित। साध सवा मैं अनद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक राम। तो एक कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहाँ गुणतास। प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवै संता तूर। तना श्री मल्ला पंजमा सो कत डरै जे खसम समारै डर डर पचै मन मुख विचारै रहाओ। सिर उपर मात पिता गुरुदेव सफल मूर्त जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रास मिल साध संगत होवत प्रगास। जियन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटै हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासै गुरमुख जाके मन तन वासै। जिसनों आप लाए लड़ लाए दरगह मिलै तिसे ही जाए। सही भगत जे साचे पाणे जमकाल ते पए टिकाणे। साचा साहिब सच दरबार कीमत कहण कहे विचार। खट खट अंतर सगले आधार नानक जाचै संत रे नार। श्री मल्ला पंजमा इक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर बार तेरा भरवासा तू जन कै है संग। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग। जन को प्रभ अपने का धान जो तू कर है करावै स्वामी सा मसलत प्रवान। रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति एहि बिद जाती। तां श्री मल्ला पंजमा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंट लाए गुरु राखे संसार सागर महै जल नदी ने किने ना दुत्तर भाख है। जिन कै मन साचा विश्वास पेख पेख स्वामी की सभा अनु सदा उलास। राहो चरण सन पूर्ण परमेश्वर अंतरजामी साखे ओ जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राख्यो। तना श्री मल्ला पंजमा जय जय पेखो तै हजूर दूर कथो न जाई। रव्या रहा सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बिछुड़ै सो संगी गनिए। बिंस जाए जो निमक मैं सो अल्प सुख भनिए। रहाओ प्रतपालय प्याओ दे कछ ऊन ना होई सास सास मालता मेरा प्रभ सोई। अशल अशेद अपार प्रभ ऊंचा जा का रूप जप जप करै आनंद जन आश्चर्य अनूप। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम है राधा नानक मंगै दान प्रभ रीन पग साधा। तनासरी महला पंजमा जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कराओ। अनंत मंगल गुण गाओ सहज तुम निश्चल राज कमाओ। तुम कर आव मेरे मीत तुम रे दुखी हर आप नारे आप दा भई पदीत। आओ प्रगट किन्ने प्रभ करने हारे हासन भाजन थाके कर मंगल वाजे नित वाजे अपने खसम नवाजे। आस्थिर रहो डोलो मत कभू गुर कै बचन आधार। जय जय कार सगल भूमंडल मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे आपे भया सहाई अचरज किया करने हारै नानक सच वड्याई। तना श्री मल्ला पंजमा घर छे मां इक ओंकार सतगुर साध। सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जीओ हर बिन मुक्त न काहो जीओ। रहाओ मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर अवर जंजाल तेरे काहू न काम जियो। जीवन देवा पर ब्रह्म सेवा एहो उपदेश मऊ को गुरु दीनो जियो।

चित्राक सगल है मरना। राहो चंद्र चुआ रस भोग कतने कै बिख्या बिकार देख सगल है पीके एके गोविंद को नाम नीको कह तो है साध जन। तन तन आप तप्यो हर जापरा निमुख जाप्यो अर्थ दर्भ देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म भला तिन ओट गही संत भला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना। पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान एक निरंकार नानक मन लगना। तुरा श्री मिला पंजमा कर तमा क्यों कर सतगुर स्वाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लव मोह महापौ जल तारे रहाओ सा सास निमक निमक दिन सो रह नचतारे। सत्संग जपन संग मन दान तारे चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद विचारे। सा जना की रे नानक मंगल सुख सुधारे तनासी मल्ला पंजमा घर वटमद पदे कुंका सतगुर प्रसाद। सिमरो सिमर सिम सुख पावो सा सा समाले ही लोक पर लोक संग सहाई जत कत मोह रखवाले। गोर का बचन बसै जिनाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले वै पाया है न साकै जाले। रहाओ निर्धन को धन अंधले को टिक मात दूध जैसे बाले। सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी मल्ला पंजमा पाए कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई। नव निद्रित सिद हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सक रही जाई। ग्रह पर ठाकुर भगत न कार आब रहा सिर उठाई रहाओ। ताग कोई ना पहुंच रहा राजा कै अंग गोसाई। जबकि त्रास मिठ है जिस सिमरत नानक नाम त्याई। नासी मल्ला पंजमा दर्भ बंद दर्भ देख गर्भ भूम बंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा त्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओण समारे जैसा बित तैसा होए वरते अपना पल नहीं हारे। रहो आंत आग पय एक आसरण शरण कार आय। संत अनुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाय। तना श्री महला पंजमा जागो हर रंग लागो इस जग मह सो गई तय सूरा। आत्म जने सगल वस्ता गय कार जाओ का सतगुर पूरा। ठाकुर कहिए आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सह समावन संग। रहाओ जन के चरण बस है मेरे हीरे संग पनीता देही। जन की धूल देहो कृपा निद नान को कह सुख यही। नासरी मल्ला पंजमा जतन करे मान खो डहकावे। ओहो अंतर जामी जाने पाप करे कर मूर मुख कर पावे भेख करे निर्वाण। जानत दूर तो मैं प्रभ नेर उत ताक उत ते उत पेख है आवे लो भी फेर। रहाओ जब लग तुट राही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई। कह नानक दयाल स्वामी सत भगत जन सोई।

0: विस्मादृ विस्मादृंग विस्मादनंग विफ्रेजन विस्माद पवन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाने विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिप विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझन पूरे भाग महला पहला।
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत भाउ सुख सार।

पंडो ही पंडु पुजै पंडै बाजना को नानक पंडै बहराए को सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पागारती चार नानक ते मुखोजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आख्या अपना जिसना ही सोचन कड़ी है।

मरे गात मैं तुम ही नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी अक्यो अंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौत जी सहाय वार, श्री भौत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकाय। गुरु नानक लई त्याय, फिरंगत गुरते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो, श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौन दयावे ताए। सब थाई होई सहाय दसवीं पातशाह, तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई होई सहाय। दसों पातशाहियों की जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ, दीदार दा ध्यान तरखाल से। सब बोलो जी पंजा प्यारिया, चौं सब जादे, चालिया मुक्तिया, अठिया जपिया तपिया, शही सिंघा सिंघणिया, जिन नाम जपया, वंड छकिया, देख चलाई, तेग वाई, देख के अंठ कीता, तिना गुरमु प्यारे सचारे की कमाई का ध्यान तरखाल से। सब बोलो जी जिन्हा सिंह सिंघणिया, धर्मे सी दिते, बांध बांध कटाए, चरखड़िया ते चढ़े, आरिया नाल तन चरवाए, उबलदिया देगा विचो वाले, खोपरिया लुहाइया, गुरुद्वारे की सेवा संभाल ली, कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया, असहत गए असहार दे शहीदो सिकिद के सा सुवासा संग नभाई, धर्म निहारिया, तिना समूह शहीद सिंह सिंघणिया की कमाई का ध्यान तरखाल से। सब बोलो जी वाह। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे जी का ध्यान तरखाल से। सब बोलो जी वाह। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा, दे ते फतेह बिरद की पैज, पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल वाले खालसे। सब बोलो जी वाह। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रह दान, बबेग दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के इशनान, चौंकियां चंडे बुंगे, जुगो जुगो अटल, धर्म का जयकार, खालसे जी के बोल बाले खालसे। सब बोलो जी वाह। सिखा दा मानी मां मात उची मादे राखे, आप अकाल पुरख अंतर जामे, गुरु गरीब निवास जी पातशाह पांदे, सदा सहाज दार पिता जी ओ, श्री ननकाणा साहिब गुरुद्वारे गुरुधामा तो जिन्हों तो पंथ नूं भी छोड़िया गया, सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। निमाणिया दे माण, नताणिया दे ताण, नेउटिया दे ओड़ने, आसरे दे आसरा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप दी अपार बख्श रहमत कृपा दा सदका अमृतले, सजे दीवाना विच आप दी लाही बाणी श्री आसा की वार दे कीर्तन सेवा करदिआं, होईआं भुल्लां बख्शण दीआं पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सरबत संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणा, जो संगतां अमृत वेले तों आप दे चरणां च हाज़र होईआं, तिल फुल भेटा कीती, कीर्तन भेट माया अरदास कराई, सब दी हाजरी दर पवानी, सेवा थाए पौनी, सिर ते मेहर भरिआ, थकड़ां तंदरुस्तियां बख्शणियां, परिवारां विच सुख वरतौणा, सरबत संगतां दे कारोबारां विच बरकतां बख्शणियां, पंथ दे सिर ते मेहर भरिआ हथ रखणा, आप दे दरों घरों वरसाई भाई इंद्रजोत सिंह गिल अते भाई सिमरजीत सिंह बराड़ परिवार अते भाई गुरमेल सिंह गिल परिवारां वल्लों बख्शियां दातां दा शुकराना करदे, परिवारां दी सुख शांति तंदरुस्ती चढ़दी कला, कारोबारां दीआं बरकतां गिल ते बराड़ परिवार वालों बच्चों के जन्मदिन मनाउंदिआं होइआं, अते भाई गुरमेल सिंह गिल वालों बच्चे के दंद काज की सफलता की याचना करदिआं होइआं, आप दे चरण प्रसंग करदिआं संगतां दे चरण प्रसंग विच जा रहे ने, श्री खंड प्रसाद साहिब कीर्तन अते गुरु के लंगरां की सेवा हो रही है, मेहर करनी दाता जी परिवारां की सेवा थाए पाउणा, परिवारां विच सुख वरतौणा, बच्चों के सिर ते मेहर भरिआ थकड़ा चढ़दिआं करा, गुरसिखी जीवन बख्शां, बच्चों नूं माता पिता आग्या करी, बच्चे देश कौम दे सुख शुभ गुण बख्शिश करने, अते मेहर करनी गिल परिवार दी बच्ची दे आनंद कारज अपने अंग संग सहायक संपूर्ण करने, अते बच्चे नूं दाता जी चढ़दिआं करा,
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਰੰਭੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ

कटा को देवो दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गल में जान हो आपे, आपन संग आप प्रभराते, तुमरी उस तुम ते होए, नानक अवर न जान सको होए, सर्व धर्म में शेष धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर्म, सर्व सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जसन रसन बखानी, सगल थान त्यो उत्तम थान, नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक, निर्गुण हर आनया, सो प्रभ सदा संभाल, जिनकी याद से चीत रख, नानक निभे नाल सबदी, रमैया के कुछ चेर परानी, कौन मूल ते कौन दृष्टानी, जिन तू सा सुहार सगारिया, गर्भ अगन में जिने बारिया, बार बसत प्यारे दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद, बिरध पया ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन, ए निर्गुण गुण कछु न पूजै, बख्श ले तो नानक सीजै, जे प्रसाद तार ऊपर सुख बसे, सुत प्राथ मीत बंता संग हसै, जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पन पावक अमुला, जे प्रसाद पोगे सब रसा, सगल समग्री संसाद बसा, दीने हस पाव कर नित रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दुख मुड़ अंध ब्यापै, नानकार लियो प्रभापै, आद अंत जो रखन हार, तिस्यो प्रीत न करे गवार, जाकि सेवा नवनिध पावे, तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावे, जो ठाकर सा सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकि टहर पावे दरगह मान, तिसे विसारे मुग्ध जान, सदा सदा यो पूलन हार, नानक राखन हार पार, रतन त्याग कौटी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै, जो शरणा सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे, चंदन लेपो तारे धोए, गर्द प्रीत भस्म संग होए, अंधकू में पसुत बिगराल, नानक गाल लियो प्रभ जाल, करतूत पशु की मांस जात, लोग बचारा करे दिन रात, बाहर पेखंतर मर माया, शब्द नाही कज करे छिपाया, बार ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ समान, अंतर अग्न बाहर तन स्वा, कल पाथर कैसे तरे था, जाके अंतर बसे प्रभाव, नानक दे जन सह समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहले हो और निभावे, कहाँ बुझार बूझे डोरा, निष्कहिए तो समझे पोरा, कहाँ विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग, क पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तो आवसन गवन, करतार करना मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, संग सहाय सुहावे न चीत, जो बराई तास्यो प्रीत, बलवा के अग्रे पीतर बसे, अंध के हिल माया रंग रसे, लड़कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर क्रोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बयाने कही जन्म, नानक राख लियो अपन कर करम, तू ठाकर तो पैर दास, यो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बार्ग तेरे, तुमरी कृपा में सुख नेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते होए सुआज्ञाकारी, तुमरी कदम तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, श्लोक दे।

भवविद अनक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार विहारी कई कोट पह तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट भेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नव धन नाम ते आव है नान करते का अंत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपेगात्म निकोर कई कोट पर दर्व को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माए कई कोट परदेश पर माए जित तला वो तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सृजति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पात्र बिरख निभ जाए कई कोट पवन पानी वे संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससिर सूर निखत्तर कई कोट देव दान इंद्र सर शतर सगल समग्री अपने सुतारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राज तामन साधक कई कोट भेद प्राण सिमरत हर सास कई कोट किए रत्न संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जकिन प्रसाद कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाज सब ते नेरे सबू ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मराए कई कोट बहुजोनी फिरा कई कोट बैठ ही खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए तनवंत।

निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पर ब्रह्म लहनते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बोपात प्रभ ते हुए प्रभ मैं संवाद ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेतरे कई कोट नाम रस पीव है अमर पै सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सह समाव है अपने जन को साथ साथ सुमार नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक

राजा कभू भिखारी नीच कसा जा, कभू अब कीरत में आवे, कभू भला भला कहावे, ज्यों प्रभु राखे तिब ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मोहन धारी लावे ध्यान, कभू तरती इस नान, कभू से साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया। नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभ पावे तिहे नचावे, जो दिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कभू साध संगत ए पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना।

नानक गर्भ गले। अष्टपदि जिसके अंतराज अवमान, सो नर्क पाती हो वसोवान। जो जो जाने मैं जो बनवंत, सो होस्त विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे वो जोन परमावे। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आज्ञा सुख पावे। धनवंता होय कर गर्भावे, तिस मान कर संग न जावे। बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होय विनाश। सब ते आप जने बलवंत, खिन में होय जाए पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अवमान, सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले फिर थारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगाह को कैसे गहवै। आपस को जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै। सब की रिन जा का मन होए, को नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब बे जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मग्न संग माए, तब लग धर्म देह से जाए। प्रभु कृपा से बंधन टूटा, गुर प्रसाद नानक हो छूटा। सहस खट लह को उठतावै, त्रिपत न आवै। माया पाशे पावै, अंग भोग बिख्या के करै। नहीं त्रिपतावै, खाप खाप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै। सुपन मुहूर्त बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसे प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी जिस कर तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। जो शकीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबु कै संग। बुझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिनसाया, मरे न बिन से आवे न जाए। नानक सदी रिया समाए, आप उपदेश से समझे आप। आप फेर रजिया सबके साथ, आप किनो आपन विस्तार। सब किसी उसका ओ करने हार। उस ते पिन कहो किसी होए, तान तनंतर एक केस होए। अपने जल तप करने हार, कौतक करे रंग पार। मन में अमन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखयानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना। भला भला भला तेर रूप, असुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरुण बखयानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत।

जहाय अष्टभरी मानो कीटक पृथ्वी सब जहान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रहे अकाए पौनस न लागे आए मारे राखे एको आप मानो के किस ना ही हार तिसका हुकुम भू सुख होए तिसका नाम रखंड फरोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस मन में कर निंकार कर मन मेरे सत विहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लै जियो नैनो पेक ठाकर का रंग साध संग बिन से सब संग चरण चलो मारो गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगा नानक उजल मथा बड़ भागी से जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाए राम नाम जो करे विचार चेतन वंत गनी संसार मंत्र मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान होते सुखी एको एक एक पछाने इस उदकी हो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुझै तिसकी जानो तिस ना बूझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अनजन कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक दिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेव को किस ते डरे जैसा सा तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधर सोधर सोधर सिजिया गुर प्रसाद तत सब पूजिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असूल न किस जन में न किस मर आपन चलत आप ही करै आवन जान दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत राज थाप ताप अविनाशी नाही खिश कांड धारण तार रहो ब्रह्मांड लख पे पुरख प्रताप आप जपाए नानक जाप प्रभ जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिनू कृपा करे बड़ भागै नाम जब पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो कुछ करे सो प्रभ कह रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होवे सो होवे करणे हार पछाणे सोए प्रभ किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दिसाना जिस तिव्र तिस मही समाए वे सुख निदान उन्हों बन आए आपस को

बस आई तेरे संग लपटे और रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माए नानक पासे ती कर जाए। जिस वखर को लहन तू आया राम नाम संतन कर पाया। तजो मान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तोल। लाल खेप संता संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल। धन धन कहे सब कोय मुखी उजल हर दर घास होए। ए वपर बिरला वपारे नानक धागे सद बलिहारे। चरण साध के तोय तोय पियो अर्भ साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा बट भागी पाइय साध संग हर कीर्तन गाइय। अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस जाखै। ओट गही संता धर आया सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवालन हार भूखे को देव दे आधार। सर्वनिधान जाके दृष्टि माए पूर्व लिखे का लहना पाए। सब कुछ तिसका वो करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग। जब जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उज निर्मल ये करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत तिस जने आवे हर प्रभचीत। भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय एको होए। सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मोकैत। साची दे साचा आकार सच वरते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच।

सो परेशान नष्ट भरी अविनाशी प्रभ मन में राग मानो की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाही किसी कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे जाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शियंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक के मन ए अनराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र न जाने होर नंद रूप मंगल सज जाके सर्व थोग सुनिए करता के राज में राज जोग में जोगी ता में तपीसर कृष्ण में पोगी त्याय त्याय भगता सुख पाया नानक तिस पुरुख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मेहत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल भरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम ते आवे से ते गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे एक रंग नाना बिरकिनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माए पूर रहो पूरन सब ठाए नाना बिरकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के

सेव किसो बड़ पाकी जन के संग एक लिवला की गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै। श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पी सच। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुणे आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भगता सुरत सत सत जस सुनता पूजन हो हर सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण कराम तिन मूल पछाण्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपो होए बसाना जिस ते उपजे तिस मै समाना बस मैल बस गढ़ाई ता को पिन न कहना जाई पूजे पूजन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक के मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सा साहस मारे अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेव की सर पर रख है अपने दास को देह बढ़ाई अपने सेव को नाम जपाई अपने सेव की आपत रख है ताकि गदमत को न लख है प्रभु के सेवक को ना पहुंचा है प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचा है जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेव को दर्ज प्रगटाया नीकी कीरी में कल रख है पसम करे लश्कर घोर लख है जिसका साथ न काट दे आप ताको राख दे कर हाथ मानस जतन करत बहुपात तिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे न राखे अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभ बिराणी बारम्बार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तन तपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके अवर नहीं दिष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रास जो जंत पताने मंथन नामे नाम समाने उठत बैठ सोवत नाम कौ नानक जन के सरकाम बोलो जहजे बाधिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भगत आत्म के चाहे प्रभ अपने सो रहे समाये जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने काफ गुम पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो और पै प्रभ बसे हजूरे कौ नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की उठले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे और से आन सगली शहर ते जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जन जानिया सतगुरु तिसका ना हो तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाऊ। अष्टपदी सतगुरु सिख की करे प्रतपाल सेवो को गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुरमत मल ही रहे गुरु बचनी हर नाम ही उचरे सतगुरु सिख के बंधन काट है गुरु का सिख बकार से हट है सतगुरु सिख को नाम तन दे गुरु का सिख बट भागी है सतगुरु सिख आहत पलत सवारे नानक सतगुरु सिख को जी नाल संवारे गुरु के गृह सेवक जोरे गुरु की आज्ञा मन में सहे आपस को कर कश ना जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हो नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो से गुरु की मत ले बिस बिस्वेगा बिस बिस्वे गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गति जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुरु को बल जाओ सर्वदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जान जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम सह स्यान बलह आना जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाई है सफल दर पेखत पुनीत पर सचन गत निर्मल रीत
पेटल संग राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगाह गवै सुन कर भजन करने आकाने मन संतोख आत्म पति आने पूरा गुरे अख्यो जाका मंत्र अमृत दे पेखे हुए संत गुण बेहंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लहे मिलाए जेवा एक उस्तत अनेक सत पूर्ण पूरख पूरन विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी गम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनग भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सद बलहारी सदगुरे अपने नानक जिस प्रसाद है सा प्रभ जपने ए रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत होए उस पुरुष का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणदास हर पै हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न ले मन में राखे हर हरेक अंधकार दीपक परगासै नानक परम पो दुख ते नासै तप्त मैं ठान वरताई नंद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेश है साधु के पूर्ण उपदेश है पौचुका निरपो हो बसे सगल व्याध मन थे खै नसे जिसका साधन कृपा तारी साध संग जब नाम मुरारी थित पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर सरवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पहे प्रकाश साध के संग रज रजना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक ए तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरो पास उम्मीद विसारो चरण कमल मैं उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ टिड़ कर गहो नाम हर वथ ए तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन वाए सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंट उठतावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुखो नित बाशे भी मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सोभा को करे भली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सब निदान में हर नाम निदान जब नानक दरगाह परवान मन पर बोधो हर के नाए दर्द तावत आवे ठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कौ नानक काटी जम फासी तत् विचार कहे जन साचा जनम मरे चोका चोका चा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप जाग शरण गुरुदेव यूं रत्न जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पाप न छूटन हारे सिमरत शास्त्र भेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सो तमीत कोटम अरबनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रस सवारी झूठा टम्ब झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातु ले आने भगत बिना बोट बैसे आने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गद पावो सार पूज सतघर को नाओ सह सुभाय नानक गुण गाओ गुण गावत उतर समैल बिन सजाए होमे बिख फैल होए चिंत बसे सुख नाल सास करा सर नाम संभाल छाड़ सियान बसगली मना सत्संग पावे सच तना हर पूंजी संज करो बिहार इहां सुख दरगा जयकार सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जापे को सलाह एक सिमर एको मन आ एक गुण गाओ अनंत
मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक रात पराश्त गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिर

अपार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार के अभिज्ञान आपन खेल आप कर देखा है, खेल संकोच तो नानक एक है। जय अवगत भगत थे आप, जय पसरे पसार संत

वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम। गोविंद भगत कै मन बसराम, कोट अपराध साध संग मिटै। संत कृपा ते जम ते छुटे, जाके मत कर्म प्रभ पाए। साध सुन नानक ते आए, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत। तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म मरण तक दुख नवारे, दुर्लभ दे तत काले उदारे। निर्मल सोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन

तयोच ताकि शोभा बणी नानक गुण नाम सुखमणि। सब तयोच ताकि शोभा बणी नानक गुण नाम सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार जो सत्संग जी सतगुरु जी पार बख्शे रहमत हो अमृत सजे दीवाना दी हाजरियां भरिया इस दीवान के समुचे दीवान की आई की सेवा भाई मनमोहन वीर सिंह जी ते रमनजीत कौर सिद्धू नू सतगुरु ने पोती की दात बख्शी है। हरविंदर सिंह जी ते रुपिंदर कौर संघा परिवार को दोती की दात बख्शी है। पिता जी शिफिंदर दीप सिंह माता जीवनजीत कौर सिद्धू नू पुत्री की दात बच्ची फरदौस कौर ने जन्म लिया। शुकराने वजो परिवार वालों अज के सत्संग की गुरु सेवा ले गई है। सुखमनी साहब के पाठ आरंभ किए गए संपूर्ण होए ने। आपने श्रद्धा भावना ते प्यार दे नाल सरवण किए ने। जिथे सुखमनी साहब का पाठ संगत रूप च होया उथे हुक्म ही है कि सिख ने आप भी करना है। और कोशिश करो कि हर एक सिख नेतनेमी होवे। बाणी का पाठ जरूर करो सारे। मैं तो इतों तक भी बेनती करदा भी घरां विच पोथियां रखो ते हर एक सिख का अपना घर विच सहज पाठ आरंभ होवे ते रोज गुरु नाल गल्लां करो। गुरु कृपा करे सब नूं चढ़दियां गल्लां। बहुत बहुत परिवार नूं वधाईयां। परिवार वल्लों कीर्तन ते गुरु के लंगरां दी सेवा भी है। इसे तरह निजर परिवार ते नैण परिवार वल्लों खंड पाठ साहिब दे भोग पए ने। उन्हां वल्लों भी कीर्तन ते गुरु के लंगरां दी सेवा है। आओ श्रवण करिए भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी दे जथे लुधियाने वाले। क्योंकि परमजीत ते परमिंदर दोनों इको जे ने ते भुलेखा जिहा लग जांदा भी परमजीत सिंह आ कि परमिंदर सिंह आ। हुण परमजीत सिंह दे जथे पास श्रवण करो। कीर्तन सब नूं बेनती है बड़े प्यार नाल मान सत्कार नाल श्रवण करना। अरदास विच शामिल होना। अरदास तों बाद मैं बच्ची नूं इक सर्टिफिकेट दऊंगा कॉन्ग्रेचुलेशन दा। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਕੀਰਤਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

उचते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुम रे तुम ते हो ऐसो तुमरी गात मैत नानक दास तुमरी गात मैत तुम ही नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी अके ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबैनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवे ताए सब ताई हो सहाय दसवें पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब ताई हो सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान त्रखाल से सब बोलो जी वाह पंजा प्यारियां चौं सब जादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शहीद सिंघां सिंघणियां जिन नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंड कीता तिना गुरमो प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान त्रखाल से सब बोलो जी वाह जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दिते बांध बांध कटाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चरवाए उबलदियां तेगां विचों बाले के खोपरियां लोहाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असह ते कह असहार दे शहीदों सिकित केसां सुवासां संग नभाई धर्म निहारिया तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान त्रखाल से सब बोलो जी वाह पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का दे अंदर खालसे सब बोलो जी वाहे प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा दे ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले खालसे सब बोलो जी वाहे सिखा नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल वाले खालसे सब बोलो जी वाहे।

करते पावै। भगवंत नानक अगम सुनाए गुर से ले की संद मिलाए, दिखिया दारू भोजन खाए, से दर्शन की सोझी पाए। रामकली महला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप भरी, भरी है पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध भेटन को आए, नेतों देह वड्याई, गुर तार तार नहारिया, देह भगत पूर्ण अविनाशी, हो तुझको बलहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी और जंगम, एक सिद्ध जिन त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिन को आया, जब तक संजम कर्म न जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर पर बवर परमेश्वर, नानक भेट्यो साचे शब्द नबेरा। राम कली महला पहला, सुरती सुरतर लाइये, एता तन कर तुला लंघे जेता, अंतर पाए तिसे तू रख, अनस दीवा बड़े अकथ, ऐसा दीवा नीर तराए, जित दीव सब सोजी पाए। रहाओ अस्सी मिट्टी सोजी हो, ताका किया माने सोए, करनी ते कर चको ढाल, एथे उथे निभि नाल, आपे नदर करे जा सोए, गुरमुख बिरला बूझे कोए, तित घट दीवा निचल होए, पानी मरे न बजाया जाए, ऐसा दीवा नीर तराए, डोले वाओ न वड्डा होए, जापे ज्यो सिंघासन सोए, जापे ज्यो सिंघासन लोए, खत्री ब्राह्मण सूद क्या वैस, नृत न पाइये गणी संसा, ऐसा दीवा बाले कोए, नानक सो अरंगत होए। रामकली महला पहला, तू दुनो निम्न मनन, तेरा नाओ साच भेट बैठन को थाओ, सत संतोख होवे अरदास, ता तू साद बहाले पास, नानक बिरथा कोय न होवे, ऐसी दरगह, ऐसी दरगह साचा सोए। रहाओ प्राप्त पोता करम पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, भांडे पाओ पवे तित आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किस की या सो किस करे, अपनी कीमत आपे धरे, गुरमुख प्रगट होवा हर राय, ना को आवे ना को जाए, दुख कार कहे मंगत जान, मांगत मान न पाया, सह किया गल्ला दरकिया बातां, तय ता कहन कहाया। राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्प चलत आप कर चीने, आपे तत् पसाणे, ऐसा ज्ञान बिचारे कोई, तित तिस्ते मुक्त परम गत होई। राव दिन में रैन रैन में दिन यारा, उसन सीत बिद छोई, ताकि गतमित अवर न जाने, गौर बिन समझ न होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख कथ कहानी, मन में जोत जोत में मनमा, पंच मिले गुर पाई, नानक तिनके सद बलहारे, जन एक शब्द मिलाई। राम कली महला पहला, जा हर प्रभ कृपा धारी, ताहो में विचो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर सब दी बचारी, सो हर जन हर प्रभ पावे, आलस भगत करे दिन राती, लाज सोड़ हर के गुण गावै। राव धुन वाजे अनद घोरा, मन मानिया हर रस मोरा, गुरपुरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया, सब नाद बेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तब सारे, गुर मिरिये हर निस्तारे, जय आप गे आपो भागा, गुर चरनी सेवक लागा, गुर सतगुर परम चकाया, कहो नानक शब्द मिलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदया दुष्ट जले दुख आगे, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमता भगत पावे जन कोई, जोगी जुगत सहज घर वासे, एक दृष्ट एको कर देखे, आपिख्या पाए सब तरपता से, राव पंच बैल गड़िया दे धारी, राम कला नभ पत सारी, तर टूटी गाडो सिर भार, लकड़ी बिरखा जरी मजबार, गुर का शब्द विचार, जोगी दुख सुख साम करना, सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंद जपे निरंकारी, सहज गोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन में मुंदरा हर गुर सरना, नानक राम भगत जन तरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा, कर पहला सतयुग सच कहे सब कोई, घर घर भगत गुरमुख होई, सतयुग धर्म पैर है चार, गुरमुख

0: ਮੂਰਖ ਬੂਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਜੇ ਨਾਮ ਲਾਗੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਿਨ ਨਾਮ ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਤ੍ਰੇਤੇ ਇੱਕ ਕਲਕੀਨੀ ਦੂਰ ਆ ਪਖੰਡ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਆ ਗੁਰਮਹਿ ਬੂਝੇ ਸੋ ਜੀ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਵਸੇ ਸੁਖ ਹੋਈ ਦੁਆਪਰ ਦੂਜੇ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਭਰਮ ਭਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਦੋਏ ਦੁਆਪਰ ਧਰਮ ਦੋਹੇ ਪੈਰ ਰਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੜਾਏ ਕਲਯੁਗ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਰਹਾਏ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਤ ਗਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਸਭ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਚੀ ਕੀਰਤ ਸਤ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਕੋਈ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਏ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੋ ਸਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਰਹਾਓ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਦੇਹ ਮਾਣਕ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਆ ਜਿਸ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਏ ਵਡ ਮਸਤਕ ਤਿੰਨ ਗੁਰਮਤ ਘੜ ਘੜ ਲੀਆ ਰਤਨ ਜਵਹਿ ਰਲਾਰਨ ਹਰਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਖਲਾਇਆ ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲੀਆ ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੇ ਲਾਕਸ ਪਾਇਆ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵਹਿ ਪਾਵੇ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਪਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ ਹਰ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਸਭ ਨਿਕਲਾ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਬੁਲਾਏ ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੁਹਾਏ ਰਹਾਉ ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਪਟਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇਹੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦਾਸ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਏ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ ਭਾਗ ਹਿਣ ਨਾ ਸੁਖਾਏ ਜਿਉਂ ਜੋ ਰਾਮ ਕਹੇ ਜਨ ਉੱਚੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ ਸੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਪਾਏ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜੀਉ ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਏ ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਏ ਹਾਂ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਾ ਮੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਰ ਜਨ ਨੀਕੇ ਤਿਨ ਉਪਰ ਹਾਥ ਵਤਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ ਰਾਮ ਮੋਕੋ ਹਰ ਜਨ ਮੇਲ ਮਨ ਭਾਵੈ ਆਮਿਓ ਹਰ ਰਾਚੈ ਮੀਟਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਉੱਤਮਾ ਮਿਲ ਉੱਤਮ ਪਦਮੀ ਪਾਵੈ ਹਮ ਹੋਵੈ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਵੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵੇ ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ ਰਿਦਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੇ ਬੋ ਬਾਤਾਂ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੂੜ ਫਲ ਪਾਵੈ ਮੋਕੋ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਗੀ ਲੈ ਪਾਵੇ ਹਉ ਕਾਟੋ ਕਾਟ ਬਾਟ ਸਿਰਾ ਰਾਖੋ ਜਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚੜਿਆ ਵੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡ ਮੇਰੇ ਜਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈਏ ਹਰ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ ਸਰਨੀ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਤਿੱਤ ਨਿਭਾਈਏ ਰਾਮ ਮੋਕੋ ਹਰ ਜਨ ਕਾਰੇ ਲਾਈਏ ਹੋ ਪੱਖਾ ਹੋ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪਿਛੋ ਸੰਤ ਆਗੇ ਪੱਗ ਮਲ ਮਰ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈਏ ਰਾਓ ਹਰ ਜਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਰੇ ਪਰੇ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਏ ਇੱਕ ਆਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੁਰ ਆਗੇ ਜੋ ਪਗਲ ਸਵਾਦ ਲਗਾਈਏ ਅਗਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤਾ ਜਾਇਕ ਰੰਗ ਬਿਖੂ ਮੁਖ ਲਾਈਏ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਤਾ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹੰਸ ਕਰਾਈਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਮੇਲੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰ ਰਾਇਆ ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸਿਖਾਇਆ ਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੀਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ तन तन वडभा गुर सरनी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे, मन हर जप जपुज पाया। नाम हीन फिरे से नकटे, तिन कस कस नक वढाया। मोको जगमीन ज्वाला स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम त्याया। राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिलिए हर उतारे, जीत दान गुर पूरे दीजा। हर अमृत नाम संभारे, राम गुर हर हर नाम कंठ धारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई, धन धन वडभाग हमारे। राह कोट कोट तेत सी त्यावे, ताका अंत न पावे पारे। हिरदे काम कामनी मांगे, रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप डा वडेरा, गुरमुख रख उतारे। जे वडभाग होवे ता जपिए, हर पवजर पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है, हर राखे कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ, हम बारक हर प्रत पारे। राग राम कली महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न बचारो कोई। माटी क्या क्या तोपे स्वामी, मानस की गत एही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो छोई फल पाव। फिर दुख न व्यापे कोई, राकाचे पांडे साज नवाजे। अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखे आतुर करते। हम तैसी कृत कमाई, तन मन तन थाप किया। सभी अपना एहो आमन जाना, जिन दिया सो चितन आवे। मोहे अंध लपटाना, जिन किया सोई प्रभ जाने। हर का मैल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा। नानक दास तुम्हारा, राम कली महला पंजवा। पवो चरना तल ऊपर आवो, ऐसी सेवक मावो। आपते ऊपर सब जानो, तो दर गै सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्रा नर दी पवित्रा। खोयन बोलो अमृत बाणी, सुर पवित्रा नरदेव पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बाणी, रहाओ परपंच छोड़। सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई। सतगुर मिलो नवे निध पावो, इन बिर तत् बलोई। परम चकावो गुरमुख लिव लावो, आत्म चीनो भाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किसो करो बुराई। सतगुर मिलिए मार्ग मुगता, सहजे मिले स्वामी। धन धन से जन जिनी, कल में हर पाया। जन नानक सद कुरबानी, राम कली महला पंजवा। आवत हरखना जावत दुखा, नै व्यापे मन रोगनी। सदानंद गुर पूरा पाया, तो उत्तरी सगल वियोगनी। ए बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे। तै हर हर हर रस भोगनी, रहाओ सुरग पवित्रा। मृत पवित्रा प्याल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे। जत कत पेखो हार गुनी, नै शिव शक्ति जल नहीं पवना। तह आकार नहीं मेदनी, सतगुर जो का तहा नवासा। जय अवगत नाथ अगम तनी, तन तन तन मन हर का तन सब हर का। हर के गुण हो क्या गनी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है। अबे अब मिलोगनी, राम कली महला पंजवा। त्रै गुण रहत रहे नरारी, साधक सिद्ध न जाने। रतन कोठड़ी अमृत स्पूरन, सतगुर के खजाने। जज किस कहण जाई, बस्त अगोचर पाई। रहाओ मोल नाई कस करने जोगा, क्या को कहे सुनावे। कथन कहण को सोझी नाई, जो पेखे तिस बने आवे। सोही जाने करने हारा, कीता क्या बिचारा। अपनी गत मित आपे जाने, हर आपे पूर भंडारा। ऐसा रस अमृत मन चाख्या, तरप तरे अकाई। कहो नानक मेरी पूरी आसा, सतगुर की शरणाई। राम करी महला पंजवा, अंगीकार किया अपने बैरी। सगले साधे जिन बैरी, एह जग लूटिया ते बैरी लै बाधे। सतगुर परमेश्वर मेरा, अनक राज भोग रस माणी। नाउ जपी परवासा तेरा, रहाओ चीतन आवश दूजी। बाता सिर ऊपर खवारा, बेपरवाह रहता स्वामी। इक नाम के हजारा, पूर्ण होए मेरे आओ। सुखदाई ऊन नकाई, बाता तत् सार परम पद पाया। छोड़ न का तू जाता, बर न साकू जैसा तू है। सच अलख पारा, अतुल था अडोल स्वामी। नानक खसम हमारा, राम कली महला पंजवा। तू दाना तू अब चल तू ही, तू जात मेरी पाती। तू अडोल कद डोले ना ही, ता हम कैसी ताती। एके एके एक तू ही एके एके तू राया तो कृपा तुझक पाया रा तू साग्रहण सतमारे तुम मेहमान कलाला तुम देवो तिल शंक न मानो हम पुंचे सदा निहला हम बार तुम पिता हमारे तुम मुख देवो खीरा हम खेले सब लाडल डावे तुम सदगुणी गहीरा तो पूर्ण पूर रहे सपूर्ण हम पी संग अकाए मिलत मिलत मिल मिल रहे आ नानक कहन न जाए राम कली महला पंजवा कर कर ताल पखावज नैणो माथे वजे रबाबा करनो मद बासरी बाजे जहवा तुन अगाजा नृत्य करे कर मनुआ नाचे आने घूंगर साजा राम कुंजकारी पेखण हार पेखे पेखण हार दयाला जेता साज सिंगारी राहो अखार मंडली तन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जलते ओपत होवा पंच तत् कर पुत्रा कीना किरत मलावा होवा चंद सूरज दो जरे चिरागा चौकुंट भीतर राखे दस पांचो पंच संगीता एके भीतर साथे भिन भिन होए भाव दिखावे सबो नवा नरारी भाखे घर घर नृत होवे दर राती घट कड़ वाजे तूरा एक नचावे एक पुहावे एक आए जाए होए तूरा कहो नानक सोबो न नाचे जिस गौर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओंकार एक तुन एके एके राग लापे एक आदेसी एक दिखावे एको रहा ब्यापे एका सुरता एकी सेवा एको गुरते जापे भलो भलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के धंध सुहाओ रहाओ पंच चित्रा करे संतोखा सात सुरा लै चाले बाजा मान तान तान तज ताना पाओ न बिंगा काले फेरी फेर न होवे कावि एक दबंद पाले नारदी नरहर जान हदूरे घूंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे भावे इहकारी जन्म न आवे जे को अपने ठाकर भावे कोट मद इह कीर्तन गावे सर संकी जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक रामकली महला पंजवा कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अलाए कारण करन करीम कृपा तार रहीम रहाओ कोई नावे तीर्था कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर नवाए कोई पढ़े वेद कोई कतेबा कोई ओडे नील कोई सफेदा कोई कहे तुर कोई कहे हिंदू कोई बासे पिछता कोई सुरगिंदु कहो नानक जिन हुकम प्रसादता प्रभ साहब का दिन भेद न जाता राम कली महला पंजवा पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत राल जाया माटी माटी होई एक रोवन हारे की कवन टेका कवन मुआ रे कवन मुआ ब्रह्म गानी मेर करो बिचारा ए तो चलत प्या रहाओ अगली किस खबर न पाई रोमन हार भी उठ सदाई परम के बांधे बांध सुपन पया पखलाए अंध ए तो रच रचया करतार आवत जावत हुक्म अपार न को मुआ न मरने जोग न बिन से अविनाशी होगा जो एहो जानो सो एहो नाहे जानन हारे को बर जाओ कहो नान गुर परम चकाया ना कोई मरे न आवे जाया राम कली महला पंजवा जप गबिंदा गोपाल लाल राम नाम सिमर तू जीवे फिर न खाई महाकाल रहाओ कोट जन्म परम परम परम आयो बड़े भागशाह संग पायो बिन गुर पूरे नाही उधार बाबा नानक आखे एहो बिचार राग राम कली महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार पकारे ना तू माने खट पी एका बात वखाने दस अष्टी मिल एको कहया ता पी जोगी भेद न लहया किंगरी अनुपवा जे जोगिया मतवारो रे रा प्रथम बच्चा सतका खेड़ा तीजा मैं किस पया दुहेड़ा दुतिया अर्धो अर्ध समाया एक रेहा ता एक दिखाया एक सूत परोए मणिये गांठी भिन भिन भिन भिन तनिये फिरती माला बिद पाए खिचया सूत न आई थाए चौ में एक मट है किया तह बिड़खे बिखड़े थान अन खिड़कियां खोज खोज द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया यो किंगरी अनुपवा जे सुन जोगी कै मन मीठी लागे रहाओ दूजा राम कली महला पंजवा तागा करके लाई चिगली लाहो नाड़ी सुआ है अस्ति अबे का कर डंडा कर तरे आ क्या तू जोगी गर्भे पर्या जप नाथ आई तेरी खिंथा तिहाई रहाओ गहरी भूतलाय बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तर पतनया पावे नार सोड़ा जाते लाज न आवे चाल चित जोगी आचन तेरा सिंगी वाजे नित उंदशेरा गुर गोरे की तै बूज न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसनु हुआ नाथ कृपाला रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंथा नामे बस्तर नानक जोगी होवा अश्चरम यूं जपया नाथ रनाई हुण पाया गुर गसाई रहाओ दूजा रामकली महला पंजवा करन करावण सोई आन दिसे कोई ठाकर मेरा सुगुण सुजाना गुरु मिलया रंगमाना ऐसो रे हर जस रस मीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवता अमर भय ने काम तन मन शीतल अग्नवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो सा जा सब किस तेरा सदबल हार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच नवाजिया खो लकवारा महल बलाया जैसा सात सा दिखलाया कहो नानक सा पर्दा टूटा हो तेरा तू मैं मन बूठा रामकली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेवक अमृत नाम दिजो मुख देवा सगली चिंता आप नवारी तिस गुर कहो सत बलहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अन तूरे सतगुर राव महमा जाकी गैर गंभीरा हुए निहाल दे जस धीरा जाके बंधन काटे राए सो नर बहो नजूनी पाए जाके अंतर प्रगटे आप ताको नाही दुख संताप लाल रतन तिस पाले परे आ सब गला कटोंबा ओ जन ले तरे आ नाक्ष भरवन दुबदा दूजा एको एक नरंजन पूजा जत कत देखो आप दयाल कहो नानक प्रा मिले रसाल रामकली महला पंजवा तंते छुड़की अपनी धारी प्रभ की आग्या लगी प्यारी जो किस करे सो मन मेरे मीठा ता इहो चज नैनो डीठा अब मोहे जानी रे मेरी गई बलाए बुझ गई त्रिशन नवारी ममता गुर पूरे लियो समझाए रहाओ कर कृपा रखियो गुर सरना गुर पकड़ाए प्रभ के चरना विश विश्वे जा का जा मन मन ठहराने गुर पार्व में एक के ही जाने जो जो कीनो हम तिसके दास प्रभ मेरे को सगल नवास ना कोई दूत ना नहीं बराई ना को दूत नहीं बहराई गल मिल चाले एके भाई जा को गुर हर दीजो सूखा ता को बहुर न लागे दुखा आपे आप सर प्रतपाल नानक रातो रंग गपाल रामकली महला पंजवा मुखते पड़ता टीका सहत हृदय राम नाही पूर्ण रहत अब देश करे कर लोक रावे अपना कह आप ना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित राव आगे राख्यो साल ग्राम मन कीनो दै दिस विश्राम तिलक चरावे पाई पाए लोक विचारा अंध कमाए खट कर्मा और आसन धोती भाग ग्रह पड़े नित पोथी माला फेरे मंगे बपूता ए बिद कोई न तरयो मीता सो पंडितो गुर शब्द कमाए त्रै गुण की उस उत्तरी माए चतर भेद पूर्ण हर नाए नानक तिसकी सरनी पाए रामकली महला पंजवा कोट बिगना नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेरा अनक पाप ताके पानी हार जाको माया पई करतार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन उवा के सर जाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला भवन बेअंत महमा ताकी केतक वरन बल बल जाइए ताके चरण तिन्ह किया जप तप ध्यान अनक प्रकार किया तन दाम भगत सोई कल में परवान, जा को ठाकर दी जामान, साध संग मिल भय परगा, सह सुख आश निवास, पूरे सतगुर दिया बिसास, नानक होए दासन दास, राम कली महला पंजवा, दोष न दीजे काहू लोगा, जो कमामन सोई भोगा, अपन कर्म आपे ही बांध, आवन जावन माया तांदा, ऐसी जानी संत जानी परगास, भया पूरे गौर बचनी, तन तन कृत मिथ्या विस्तार, है वर गैवर चालन हार, राज रंग रूप सब कूरा, नाम बिना होई जासी तूरा, पर भूले बाद हंकारी, संग नाही रे सगल पसारी, सोग हर खमैं देह विस्तानी, साकत ए भी करत बिहानी, हर का नाम अमृत कल माहे, नाना साधु पाहे, नानक गुर गोबिंद जिस टूठा, कटकर मैया तिन ही डिठा, राम कली महला पंजवा, पंच शब्द तै पूर्ण नाद, अनहद बाजे चर्ज विस्माद, केल करे संत हर लोगा, परम पूर्ण निर्जोगा, सुख सह आनंद भवन, सार संग बैस गुण गावे, तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ, ओ सिमरे केवल नाम, बिरले पावे ओ विश्राम, भोजन भाओ आधार, निचल आसन बेसमार, डिगन डोले कतु न धावै, गुर प्रसाद को एह महल पावै, भर भै मोह न माया जाल, सुन समाद प्रभु कृपाल, तां का अंत न पारा वार, आपे गुप्त आपे प्रसार, जाके अंतर हर हस्वाद, कहन जाई नानक बिस्माद, राम कली महला पंजवा, पेट सांग पर्व चित आया, संगत करत स्तोक मन पाया, संते चरण माथा मिर पौत, अनक बार संत जंडौता, ए मन संतन के बलहारी, जाकी उठ गई सुख पाया, राखे कृपा धारी रहा, संते चरण तोय तोय पीवा, संते दर्श पेख पेख जीवा, संते की मेरे मन आस, संता हमारी निर्मल रास, संता हमारा राख्या पड़दा, संत प्रसाद मोको कबू न कठदा, संते संग की दिया कृपाल, संत सहाई होए दयाल, संत सहाई भय दयाल, सुरत मत बुद्ध परगास, गैर गंभीर अपार गुणतास, जी जंत सगरे प्रतपाल, नानक संते देख निहाल, राम कली महला पंजवा, तेरे काजन ग्रह रज राजमाल, तेरे काजन विखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गाय लमीता, हर सिमत तेरी लाज रहे, हर सिमत जाम कस न कहे, राबिन हर सगला निरार्थ काम, सोने रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा, इहा उहा तेर उज्जल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे, किनी ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपे जन कोए, ताकि आशा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार, संति जीता जन्म अपार, हर संत करे सोही परवान, नानक दास ताके कुरबान, राम कली महला पंजवा, सिंचे दर्ब देह दुख लोग, तेरे काजन अवरा जोग, कर हंकार होवे वरते आंद, जम की जेवड़ी तू आगे बंद, साढ़ वडाणी तात मूड़े, इहार बचना रात मूड़े, माया के माते तै उठ चलना, रात रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल बस्ता बारक अंध पर जोबन लागा, दुर्गंध तृतीया बस्ता, सिंचे माहे इरंद प्या, छोड़ चलियो पछताए, चिरंकाल पाई दुर्लभ देहे, नाम विसुणी होई खे, पशु प्रेत मुगत ते बुरी, तिसे ना बुझे जिन एसरी, सुनकर तार गोबिंद गपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छावो छुटके बंद, बख्श मलावो नानक जग आंद, राम कली महला पंजवा, कर संजोग बनाई कास, तिस्सा रेह याना राच, प्रतपारे नित सार समारे, अंत की बार उठ सधारे, नाम बिना सब झूठ परानी, गोविंद भजन बिन अवर संग राते, ते सब माया मुठ परानी, राती संदाय उतर समैल, कर्म धर्म सब होमे फैल, लोक बिचारे गत नहीं होए, नाम भी होने चल सरोए, बिन हर नाम न टूट सपलटा सोदे सिमरता सोदे सासर सिमरता सगला सो नाम जपे जिस आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे राख आप सगल सुखा प्रभ तुमरे हाथ जित लावे तित लागे स्वामी नानक साहब अंतर जामी रामकली महला पंजवा जो किस करे सो ही सुख जाना मन समझ साध संग पत्याना डोलन ते चुका ठहराया सत महले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभ की आज्ञा मन में मानी महापुरुख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई भला जय राखे सोही मुक्त थान जो जपाए सोही नाम अठ तीर्थ जह साध पाग तरे तब कुंठ जह नाम उच्चरे सर्व आनंद जब दर्शन पाई है राम गुणा नित नित हर गाय आपे घटका रहा व्याप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खुलाने भरम नाठे दूर है नानक गौगर भेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसे गुरमुख नाम निर्मुख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कह न जाई रहा सूर वीर धीर जमत पूरा सह समाद धुन गैर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जाके हृदय वसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण नरजोग आए न जाए डोले कत नाही जाके नाम बसे मनवाही दीन दयाल गोपाल गोविंदा गुरमुख जपिए उतरे चेंदा नानक गुर दिया नाम संतन की टैर संत का काम रामकली महला पंजवा बीज मंत्र हार कीर्तन गाओ आगे मिली नथा में थाओ गुरपुरे की चरनी लाग जन्म जन्म का सोया जाग हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासे भवजर पार परला रहाओ नाम धान त्याए मन अटला ता सूटे माया के पटला गुर का समुद्र अमृत रस पियो ता तेरा होवे निर्मल जियो सुर सो शुद्ध बिचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध के सांगा मन तन रापे हर के रांगा सोड सियाण बोच तराई मन बिन हार नावे जाय नकाई दया तारी गोविंद गसाई हर हा नानक टेक टकाई रामकली महला पंजवा संत के सांग राम रंग केला आगे जमसु होए न मेला अबुद का प्या बनास दुर्मत होई सगली नास राम नाम गुण गाए पंडता कर्म कांड हंकार ना काजे कुशल सेती कर जाए पंडता रहाओ हर का जस निद लिया लाभ पूर्ण भय मनोरथ साभ दुख नाठा सुख घर में आया संत प्रसाद कमल बिकसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए दान संतोख आया मन पूरा पाए फिर मांगन काहे जाए हर की कथा सुनत पवेता जिवा भक्त पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जन उत्तम पाई रामकली महला पंजवा गह कर पकड़ी न आई हाथ प्रीत करी चाली न साथ कहो नानक जो त्याग दई ताब होए शरनी आए पई सुन संतो निर्मचा राम ना बिन गतनी काई गुरपूरा भेट उधार रहा जब उसको कोई देवे मान तब आप चूपर रखे गमान जब उसको कोई मान पर हरे तब ओ सेवक सेवा करे मुख बरावे अंत ठगावे इकत ठौर ओह कही न समावे उन मोहे बोते ब्रह्मांड राम जनी कीनी खंड खांड जो मांगे सो भूखा रहे इस संग राचे सो कसु ना लहे इसे त्याग सत्संगत करे वटभागी नानक ओह तरे राम कली महला पंजवा आत्म राम शर्म में पेक पूर्ण पूर रहा प्रभ एक रत्न अमोल दे मैं जान अपनी वस्तु पसान पी अमृता संतन प्रसाद वडे भाग होवे तो पाइये बिन जहवा क्या जाने स्वाद रहाओ अठ दस बेद सुने कह डोरा कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा पशु प्रीता का संग रचे जिस नहीं बुझावे सो कित बिद बुझे जानर हर रहा प्रभ जान ओत भोगत भगतन सिंघान बिक्स बिक्स अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेड़ न आवे राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित्ता हर तन राज नरारस व्यता कटी काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए बाजे अनहद बाजा रसक सुगुण गावे हरजन अपने गुरदेव नवाजा रहाओ आयो बन्यो पूर्वला भाग जन्म जन्म का सोया जाग गई गलान साध के संग मन तन रातो हर के रंग राखे राखण हर दयाल ना किस सेवा ना किस काल कर कृपा प्रभु कीनी दया बूढ़त दुख मैं काट लिया सुन सुन उपजो मन में चाओ आठ पैर हर के गुण गाओ गावत गावत परमगत पाई गुर प्रसाद नानक लिवलाई राम कली महला पंजवा कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाए ताहू का जतन सो संचे जो सोसी बात माया मोया टेडो जात भागे ते लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर न चेत्यो मन माही रहाओ अमृत कौरा बिख्या मीठी सागत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट हंकार रिजाना नाम सुनत जान विसुआ डसाना माया कान सदि चूरे मन मुह कबे न उष्टत करे निरपो निरंकार दतार तिस च्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साहो मुहताज पूरा पात साहो मोहे मगन लपट्यो परम ग्रह नानक तरिये तेरी मेहर राम कली महला पंजवा रैण दिन जपो हर नाओ आगे दरगे पावे थाओ सदा नंद न होवे सोगा कबू न व्यापे होमे रोगा खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्म न बिस्म भये बिस्मादा परम गात पावे हर सिमर प्राणी रहाओ गन मन देखो सगल बिचारो नाम बिना को सके न तार सगल पावना चालस सांग भवजल तरिये प्रभु के रंग देही तोये न उतरे मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए कर कृपा प्रभु दयाल मनते कबू न सिमर गपाल मानते कबू न बिसरग पाल तेरे दास की होवा तूर नानकी प्रभ सरदा पूर राम कली महला पंजवा तेरी सन पूरे गुरदेवा तुझ बिन दूजा नाही कोए तू समरत पूर्ण पार ब्रह्म सोते आए पूरा जिस करम तरन तान प्रभ तेरो नाओ एका सन गई मन मेरे तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहा जाप जप जम जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावे ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिन सेरा चे हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीता गुरपुरे की निर्मल रीता पौ पागा निरपो मन बसे अमृत नाम रसना नित जपे कोट जन्म के काटे पाहे पाया लाभ सचा तन लाहे टोट न आव्या खुट भंडार नानक भगत सोहे हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कस टोट न आवे अंत नहीं हर पारा वार रहाओ कीर्तन निर्मोल गहीरा आनंद गुणी गहीरा आदत बाणी पूंजी छंतन हाथ राखी कुंजी सुन संवाद गुपात आचन केवल नाम केवल ब्रह्म पूरन तय बासन भगत संग प्रा गोष्ठ करत तय हरख न सोगन जन्म न मरत कर कृपा से आप दवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास राम कली महला पंजवा मैं माना जाने भेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार न जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म व्यंत अपनी गत आप आपे जाने सुन सुन वावर बखाने रा शंकरा नहीं जाने भेव कोई तहारे देव देविया नहीं जाने ब्रह्म सब ऊपर लख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप सोरे आपे मेल एक भरमे एक भगती लाए अपना किया आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी नहीं ले पा तिस पुन पाप नानक का प्रभ आपे आप राम कली महला पंजवा किसु न काज न कियो अजान सुरत मत नाही किस ज्ञान जाप ताप शील नहीं धर्म किसु न जानू कैसा कर्म ठाकर प्रीत प्रा मेरे तुझ बिन दूजा अवर न कोई भूले चूके प्रभ तेरे रहा रिद न बुद्ध न सिद्ध प्रगास बिखे ब्याद के गाव में बास करन हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे के मन में टेक सुन सुन जियो मन यह विश्राम पाप खंड प्रभ तेरो नाम तू अगनत जी का दाता जिसे जनावे तिन तू जाता सो उपजो तिस तेरी आस सग अराधे प्रभ गुणतास नानक दास तेरे कुर्बान बेंत सैब मेरा मेहरवान राम कली महला पंजवा राखन हर दयाल कोट पव खंडे निमख ख्याल सग अराते जनता मिलिए प्रभ गौर मिल मंता जीवका दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट का राता मेरा प्रभ रावता की गही मन ओटा बंधन ते होई सोटा हृदय जप परमानंद मन माहे भय आनंद तारन तरन हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते उच अपार सो मत सार जित हर सिमर जिया कर कृपा जिस आपे दीजे सुख सहज आनंद हर नाव नानक जपया गुरमिल नाव राम कली महला पंजवा सगल सियाण बसाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों आशा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल ध्यान गुर स्यों राह दूजा नहीं जाने कोय सतगुण निरंजन सोए मानु का कर रूप न जान मिली नमाणे मान गुर की हर टेक टकाए अवर आशा सबलाहे हर का नाम ध्यान ता दरगे पावे मान गुर का बचन जप मनता एहा भगत सार तत् सतगुरु भय दयाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजवा होए होवे सोई परमान अपना तज उमार दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण एही सुआओ आनंद कर संत हार जाप साठ चाण बोचतराय गुर का जाप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस भीतर निर्मल जाप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजर उतरे पार देवन हरद तार अंतन पारा वार जां के कर सर्ब निधान राखन हर निधान नानक पाया निधान हरि हर निर्मल नाम जो जपे तिस की गत होए नानक करम प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दुर्लभ दे सवार जाय नदर गे हार हलत पलत उद होए बड़े आई अंत की बेला लय सडाई राम के गुण गाओ हलत पलत हुए दुवे सहेले अचरज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिन से सगल संताप बैरी सब होवे मीता निर्मल तेरा होवे चीता सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उत्तरे पार पूर्ण तेरी होवे आस जमकी कटके तेरी फांस गुर का शब्द गुर का उपदेश सुनिजे नानका सुख सहज समीजे राम कली महला पंजवा जिसकी तिसकी कर मान अपना लाए गमान जिसका तू तिसका सब कोए तिसे अराध सदा सुखोए काहे पर परमे बगान ने ना बिना किस काम न आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने राव जो जो करे सोही मान ले हो बिन मान ने राल हो वे खेह तिसका पाना लागे मीठा गुर प्रसाद विरले मन बूठा विह प्रभाव अगोचरे आप आठ पैर मनता को जाप जिस चित आए बिन से दुखा हलत पलत तेरा उज्जल मुखा कौन कौन उजरे गुण गाए गण न जाए कीम न पाए बूट लो साध संग तारे नानक जिसे प्राप्त करे। रामकली महला पंजवा मन माहे जाप भगवंता पूरे गुर पूरे एह दीनो मनता मिटे सगला भय त्रास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किस कह न जाई साचे सच लख अपेवा। राकन करावण आप तिस जन सदा मन जाप तिसकी सेवा कर नीत सच सहज सुख पावे मीत सहब मेरा अत भारा खिन में था पूथा पनहारा तिस बिन अवर न कोई जानकार राखा सोई कर कृपा अदास नीजे अपने सेवक को दर्शन दीजे। नानक जापी जप जाप सब ते उच जाका प्रताप। रामकली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेका अवर सूटी सब आस चिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हुए पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे। रहाओ तुम ही कारण करन चन कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिसकी ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत दान राखन हर निदान। सर्व की रेण हुई जय आप मटाए मलीजे अंदन त्याये नाम सबर नानक एहो काम। रामकली महला पंजवा कारण कर्ण करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लाह अलख अपार खुद खुदाए वड बेसमार। ओ नमो भगवंत गसाई खालक रव रहा सर्व ठाई रहाओ जगनाथ जगजीवन माधो पौ भंजर हिद माहे अरादो। रिखी केश गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मकांद मेहरवान मौला तुही एका पीर पकंबर सेख दिल का मल करिहा कुकरान कतेब ते पाक नरहन नर हर दियार रमत राम कट कट आधार। वासुदेव बस छब ठाए लीला किस लखी न जाए मेर दया कर करने हार भगत बंदगी दे सृजनहार। कौ नानक गुर खोए परम एको अल्लो पार ब्रह्म। रामकली महला पंजवा कोट जन्म के बिन से पाप हर हर जपत नाही संताप। गुर के चन कमल मन वसे महा बकार तांते सब नसे गोपाल को जच गाओ प्राणी कथ कथा साची प्रापूर्ण ज्योति ज्योत समाणी। रहाओ तृष्णा भुख सब नासी संत प्रसाद जपे अबनासी रहन दिन प्राप सेवक कमानी हर मिलने की एह निशानी। मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल गुर का दर्शन देख निहाल परा पुर बरा कर्म बन आया हर के गुण नित रचना गाया। हर के संत सदा परवान संत जना मस्तक निशान दास की रेण पाए जे कोय नानक तिसकी परम गत होए। रामकली महला पंजवा दर्शन को जाइए कुर्बान चन कमल हृदय तर ध्यान तूर संतर की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए। जिस भेटता मिटे अभमान परम सब नदरी आवे कर कृपा पूर्ण भगवान। रहाओ गुर की कीर्त जपिए नाओ गुर की कीर्त जपिए हर नाओ गुर की भगत सदा गुण गाओ गुर की सुरत निट कर जान। गुर का शब्द सत करमान गुर बचनी संसार सुख दुख कदे न व्यापे तृष्णा भूख। मान संतोख शब्द गुर राजे जप गोबिंद पढ़दे सब काजे। गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुरदाता दयाल बखसांदा गुर चनी जा का मन लागा नानक दास तिस पूर्ण भागा। रामकली महला पंजवा किस परवासे बिचरे भमन मूड मुगद तेरा संगी कमन। राम संगी तेसा गत नी जाने पंच बटवारे से मीत करमाने सो कर सेव जित उदरे मीत गुण गोबिंद रवि दिन राती साध संग कर मन की प्रीत। रहाओ जन बिहानो अहंकार और वाद तृप्त न आवे बिख्या साध परमत परमत महा दुख पाया तरी न जाई तरमाया। कामना आवे सो कारकम आवे, आप बीज आपे ही खावे, राखन हार को दूसर नहीं कोए, तो निस्तरे जो कृपा हुए, पत प्रीत प्राप्ति रो नाम, अपने दास को कीजे दान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, शरण गई नानक प्रभ तेरी, रामकली महला पंजवा, यह लोक के सुख पाया, नहीं पेट धर्म राया, हर दरगाह शोभा वंता, फुर गर्भ नाही बसंता, जानी संत की मत राई, कर कृपा दीनो हर नामा, पूर्व संजोग मलाई, रहाओ गुर के चरण चित लागा, तन तन संजोग सुपागा, संत की तूर लागी मेरे माथे, किल बिख दुख छगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध परानी, जन का सफल दर्श डीठा, नाम प्रभु का घट घट उठा, मटाने सब कल कलेश, जिसते उपजे तिसमाय परवेश, प्रगटे अनूप गोबिंदा, प्रभपूरे नानक बकसांदा, रामकली महला पंजवा, गऊ को चारे सारदूला, कौडी कालख हुआ मूला, बकरी को हस्ती प्रतपाले, अपना प्रभ नदर निहले, आधार प्रीत प्रा मेरे, वर्ण साकू बहुगुण तेरे, रहाओ जिसता माछ न खाए बलाई, महाकाश्यप सुरी छटपाई, कर्णहार प्रभ हृदय उठा, फाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काट हरे चलूला, ऊंचे थाल फूले कमल अनुपा, अग्न नवारी सतगुर देव सेवक अपनी लायो सेव,
1: कर्ण अकृत कणा का करे उदार। प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरणाई, राम कली महला पंजवा, पांच सिंह राखे, पांच सिंह राखे प्रमार, दस बघ्याड़ी लई नवार, तीन आवृत की चुकी केर, साध संग चुके पै फेर, सिमर सिमर जीमा गोविंद, कर कृपा राख्यो दास अपना, सदा सदा साचा बख्शिंद, रहाओ दास गए तृण पाप समेर, जप जप नाम पूजे प्रपैर, आनंद रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम भगत जोरी सुखमान, सागर तरयो वाचर खोज, खेद ना पायो नै पुनरोज, सिंध समायो कटुके माहे, कर्ण हार कहो किछ अचार्ज नाही, रसक रसक नानक गुण गाहे, राम कली महला पंजवा।

काल काल चक्र पेलो। अर्चन कमल शरणाय मना राम नाम जप संग सहाय गुरमुख पावे साच तना। रहा उन्हें काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही जूरे करे विकार जीरे के ताई। गाफल संग न तसुआ जाई तरत तोवन कशल जाने कोडी कोडी को खाक सिर शान जिन दिया तिसे न चेते मूल। मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म ज पै दयाल एहि मन हुआ साधर वाल। हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचे सा समाई। राम कली मल अपन महाराज राम की सुनाए निरपा पय गोविंद गुण गावत साध संग दुख जाए। रहाओ जाके राम बसे मन वाही सो जन दुत्र पीकत नाही। सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुरु तरह सो दास आदेसा काहे करै। जन मरण की चुकी कान पूरे गुरु पर कुरबान गुरु परमेश्वर पेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिस कृपा करे साध संग सो पवल तरे अमृत पीवो साध प्यारे मुख उज्जल साचे दरबारे। आनंद करो तज सगल विकार नानक हर जप उतरो पार। राम कली मल्ला पंजमा ईंधन तेव संतर भाग माटी को जल उदह दिस त्याग ऊपर चरण तलै आकाश घट मै सिंध कियो प्रकाश ऐसा समर्थ हर जियो आप निमख न विसरै जी भगतन कै आठ पहर मन ता को जाप। रहाओ प्रथमे माखन पाचे दूध मैलू कीनो साबन सूद पै ते निरपोडरता फिरै होंदी को अणहोंदी हिरै दही गुप्त बदही दिसै सगले साज करत जगदीसै। ठगन हार अनठग दा ठग बिन पखर फिर उठ लागै संत सवा मिल करो बख्याण सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोई। नानकता की प्रमगत होए राम कली महला पंजमा जो तिस पावै सो थिया सदा सदा हर की सनाई प्रभिन नाही आन बिया। राव पुत कलत्र लखमी दिसै इन मह किशुन संग लिया बेखे ठगोरी खाए भलाना माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत बिगुता गर्भ जोन मह किरत पया पुरब कमाणे छोड़ नाही जमदूत ग्रास्या महा पया। बोले झूठ कमावै व्रा त्रिष्ण ना बूझै बहुत होया अस्त असाद रोग उपजा संत दुख न दे बनासी महा गया। जिने नवाजे तिन्ही साजे आपे किने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पर ब्रह्मया। राम कले मला मनमा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाय जागा सिमरन वृथा न जाई। रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल जाके धूर घट है जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के कार सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो नाथ को नाथ पत दान कृपा निदानो सदा सदा जय करवान। निर्मल मंत दे जिस दान तजे विकार विनसै अभिमान एक तिहाई साधक संग पाप विनासै नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल वास घट घट रब रहा गुणदास। दास दे तारो प्रभ आस नित नानक चित वै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा घर दूजा दपदे क्योंकार सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाई है आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत हो बत प्रकाश चन कमल मैं होए निवास सत संगत मैं होए उदार नानक भजलो त्रस पार। राम कली महला पंजवा गुरपुरा मेरा गुरपुरा राम नाम जप सदा सहेले सगन मासे रोग कूरा। रहाओ एक रहा दो साचा सोए जा की शरण सदा सुख होए। नींद सहेली नाम की लागी भूख हर समर्थ बिन सह सब दुख सहज आनंद करो मेरे भाई गुरपुरे सब चिंत मटाई आठ फैर प्रभ का जाप जाप। नानक रखा हुआ आप राम कली महला पंजमा पड़ताल करते जय कुंकर सतक प्रसाद। नार नार है नमस्कार जलन थलन बसुध गगन एक एक अंकार। राव हरन धरन पुन पुन है करन है ग्रह निरहंहार गंभीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपार। कर्ण केल गुण बोल नानक बलिहार राम कली मल पंजमा रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले माया शले कनिक कामनी।
रहाओ भंडारा वधर अर्व खरब पेख लीला मन सुधार नह संग गामनी सुत कलत्र प्रात मीत उर्ज परयो भ्रम मोहो ए बिरख शामनी चरण कमल सर नानक सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौमा तिपदे रे मन ओट लिहो हरनामा जा कै सिमर दुरमत नासे पावे पद निर्वाण रहो बड़भागी तह जन कौ जानो जो हर कै गुनगावे जन्म जन्म कै पाप खोए कै फुनो वैकुंठ सदावे अजामल कौ अंतकाल मह नारायण सुध आई जा गत कहो जोगी सर बचत सो गत शिन में पाई नहन गुण नहन किश विद्या धर्म कहोन गज कीना नानक बिरद राम का देखो अभैदान तह दीना राम कली मलन साधो कौन जुगत अब की जय जाते दुर्मत सगल बनासे राम भगत मर भी जय रहाओ मन माया मह उर्ज रहो है पूजे नह किश ज्ञाना कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निर्वाणा पै दयाल कृपाल संत जन तब यह बात बताई सर्व धर्म मानो तह किए जे प्रभ कीर्त गाई राम नाम नर सेवा सुर मह निमख वेक उर तारे जम को त्रास मिटे नानक तह अपनो जन्म सवार राम कले महला नामा प्राणी नारायण सुध लहे छिन छिन औध कटै निसवासुर बृथा जात है दे राओ तरनापो बख्यान स्यों खोयो बाल पन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझै कौन कमित और जाना मानस जन्म दी हो जह

संसार न बैठा। जे को सतकरै सो चीजै तप कर तप न होई, जे को नाओ लय बदनामी कल के लखण होई। जिस सिकदारी तिसे कुआरी चाकर कहे डरना, जा सिकदारै पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना। आख गुणा कलाखी है ते जुग के रारे हाथ पाव, सो जे गुण देहता पाई है रहाओ कल कलवाली। सरल बेड़ी का जी कृष्णा हुआ बाणी, ब्रह्मा वेद अथर्वण करणी कीर्त लिहा। पत बिन पूजा सत बिन संजम जत बिन काहे, जनेऊ नाव हो नाव तो बो तिलक चलावो, सुच बिन सोच न होई। कल प्रमाणक देव कुरान पोथी पण तुरहे, प्राण नानक नौ पया रहमान कर किरता। तू इको जान नानक नाम मिले बड़ियाई, एदू उपर कर्म नहीं जे कर होंदे मंगण जाइए, फिर लामा मिले तही। राम कली मिले पहला जुग प्रबोध है, मड़ी बधावै आसन त्याग कहे सच पावै। ममता मोह कामण हितकारी ना अदूती ना संसारी, जोगी बैसर होत बदा दुख अवागै। घर घर मंगत लाज ना लागै, रहाओ गावै गीत नाची नह आप। क्यों लागी निबरै प्रताप, गुर कै शब्द रचै मन भाए। विख्या सहज विचार खाए, भसम ढाए करह पखंड माया, मोहै सह जम डंड फूटै खापर। भीख न पाए मंदन बाध्या आवै जाए, बिंद न राखै जति कहावै। माई मगत माई मागत त्रै लवावै, निर्दया नहीं जोत जाला, बूट तबूढ़ सर बजन जाला। पेख करै खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेलै बहु नटुआ। अंतर अग्न चिंता बहु जारे, बिन कर्मा कैसे उत्तर सपारे। मुद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जीवा इंद्री साधु लभाना, पशु भय नहीं मिटै निशाना। त्रिवद लोगा त्रिवद जोगा, शब्द विचारै चुक सोगा। ओ जल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारै सोए। तुझ पह नहो निध तू करना जोग, थाप थाप करे सो होग। जत सत संजम सच सचीत, नानक जोगी त्रिपुण मीत। राम कलेम पहला खट मट दही, मन वैरागी सुरत शब्द तुन अंतर जागी। बाजे अनहद मेरा मन लीणा, गुरवचनी सच नाम पतीना। प्राणी राम भगत सुख पाइया, गुरमुख हर हर मीठा लागै। हर हर नाम समाइया, रहो माया मोह वर्जित समाए। सतगुर भेटे मेल मिलाए, नाम रत्न निमोलक हीरा। तित राता मेरा मन तीरा, हो मैं ममता रोग न लागै। राम भगत जम का पहो पागै, जम जंदार न लागै मोहे निर्मल नाम हृदय। हर सोहे शब्द विचार पहे निरंकारी, गुरमत जागै अधर्मत प्रहारी। अंतन जाग रहेल बिलाई, जीवन मुक्त गत अंतर पाई। अल्पत गुफा मैं रहे नरारी, तस्कर पंच शब्द सुधारी। पार कर जाए न मन डुलाए, सहज निरंतर हो समाए। गुरमुख जाग रहे अदूता, सद वैरागी तत प्रोता। जग सूता मरा वह जाए, बिन गुर बचन बेर बिन गुर शब्द न सोजी पाए। अनहद शब्द बजे दिन राति, अवगत की कत गुरमुख जाति। तो जानी का शब्द पछानी, एको रब रेहा निर्वाणी। सुन समाध सहज मन राता, तज हो लोभा एको जाता। गुर चेले अपना मन मान्या, आना के दूजा मेर समान्या। राम कली महला बैला, साहा गण ना कर है विचार। वो साही ऊपर एक अंकार, जिस गुर मिले सोई बिद जाने। गुरमत होए ता हुक्म पछाणे, झूठ ना बोल पांडे सच कही है। हों मैं जाहे शब्द कर लई है, रहो गाण गाण जुत कांडे कीनी। पढ़े सुना बै तत न चीनी, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। होर कथनी बधो न सगली शार, ना बो तो पूज है सैला। बिन हर राते मैलो मैला, गर्व नार मिलै प्रसार्थ। मुक्त प्राण जप हर करतार्थ, बाचे बाद ना भेद विचारे। आप डूबे क्यों पितरा तारे, घट घट ब्रह्म चीनै। जन कोई सतगुर मिलै तसोजी होए, गणत गणिय सहसा दुख जियै। गुर की सुन पवै सुख दियै, कर प्राध सन हम आया। गुर हर भेटे प्रभु कमाया, गुर शरण आइयै ब्रह्म ना पाइयै। भरम भलाइयै जन्म मर आइयै, जम दर बद हो मरै बेकार। नारद नाम ना शब्द चार, एक पादे पणत विसर कहावै। दुबदा राते महल ना पावै, जिसको प्रसादी नाम आधार। कोट मदे को जन आधार, एक बुरा भला सच एक है। बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक है, गुरमुख बेली एको जाणिया। आवण जाणा मेठ समाणिया, जिन कै हृदय एक ओंकार। सब गुणी साचा विचार, गुरु कै भाणे कर्म कमावै। नानक साचे सास मावै। राम कली महला पहला, हठ नरगो करत काया।

जियो। गुण रंग राते तन ते जन जनी एक मन त्याया, सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रभ पाया। पुन दान ना तुल क्रिया हरव सर्व पाप हंत जियो। बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण न रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार, कथनी सा तुद पापसी नानक नाम आधार। संत शरण साजन पर हो स्वामी, सिमर अनंत सुके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत। शंत रुत सरस बसंत महाचेत बसाख, सुख मास जियो हर जियो ना मिलया मोलिया। मन तन सास जियो कार नाह निश्चल अनद सखिया, चन कमल परफुलिया सुंदर सुखड़ सुजान। बेता गुण गोविंद मुलिया, बड़ भाग पाया दुख गवाया पही पून आस जियो। बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो। श्लोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बाधिया नानक करमै लेख। भाणे से मिलिया बिछोड़े पियाप, नानक प्रभ शरणागति जाका बड़ प्रताप। शंत ग्रीखम रुत अत काकड़ी जेठ काड़े काम जियो, प्रेम विशोह दुहागणी दृष्ट न करी राम जियो।

0: कर पाप जोन में पीत होई दे सासन राम जियो ब्रह्मंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक
1: सरदा लागी संग प्रीत मैं कतल रहन जाए मन तन अंतर बस रहे नानक सह सबाए कर गए लीनी साजन है जन्म जन्म खे मीटा चरण है दासी कर लही नानको ब्रोहत चीत शांता रुत बरस सहेलिया सावन भादव आनंद जी आओ कानो नमें उठे जालो थल पूरे मकरंद जियो प्रभ पूर रहा सर्व ठाही हर नाम नाम परे सिमर स्वामी अंतर जामी कोलो समूहा सब तरे प्र रंग जागे न शिदर लागे कृपा सद बख्शन जियो ब्रह्मंत नानक हर खंत पाया सदा मन पवंद जियो सलोको आस प्यासी मैं फिरूं कब वेखो गोपाला है कोई साजन संत जनो नानक प्रभ मेलन हारो बिन मिल बे शांतन उपजै तिन पल रहन जाए हारो सदा शरनागथी नानक आस पुजाए शांतो रुत सद आडंबरो असूगत के हर प्यास जियो खो यंती दर्शन फिर तो कहमलिंग गुड़तास जियो बिनकंत प्यारे न सुख सारे हारा कंगण त्रिक बना सुंदर सो जानो छत्र बेथी सास बन जैसे तना इतूत दशा लोखण मन मिलन प्रभ प्यास जियो ब्रह्मंत

या खरा खरा आखें सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खन मैं मुए जा शब्द पछानिया।

में सुख सहज निवास ज्ञान आवे आए न जाए गुर प्रसाद रहे लबलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थर चीत समाध सगोने हर नाम चेत फिर पवन जुनी गुरमत सार होर ना वहुनी कर दर फिर थाकी वह तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सो तिया केते गुर चेले फन हुआ काचे गुरते मुक्तन हुआ केती नारवर एक समालो गुरमुख मरन जीवन प्रभ नाला दैद ढूंढ करे मैं पाया मेल पिया सतगुरु मलाया गुरमुख गावै गुरमुख बोलै गुरमुख तोल तलावै तोलै

गुरमुख शब्द अमृत है सारो, नान गुरमुख पाव पारो, चंचल चीत न रही ठाए, चोरी मृग अंगूरी खाए।

अंता गणत गणा वे अखनी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुरबिन ज्ञान होए। तोटी तंत्र वावकी वाजे नहीं वजोगा विछण अमेले प्रभु नानक कर संजोगा। तरवर काया पंख माना तरवर पंखी पांचा तत चुखे मल एक से तिनको फासन रांचा।

थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा विचारो सुन नाथ नाथ थू निदारा दारा।

कर जा। गुणिया गुण प्रमला क्यों तन मिलो प्यारो, तन ही जैसी थी रहा जब जब हृदय मरारा। आप गुणी भरपूर है गुण पी बस नाल, बिन सतगुर गुण अपनी जिचरो शब्द न करे विचारा।

राम चाकरो कहिए खसम का सह उतर देव जो गवाई अपना ताकतन बस से प्रीतम हथ बड़े अन्या जय पावै तं दे आप करे कसे आखियै अवन कोय करे बीजो सूजै को नहीं बहे दलीचा पाए नरक नवार न रहो साचो साछे नाए वाण त्र ढूणत फिर रही मन में करो विचारो लाल तन बो मानखी सतगुर हाथ भंडारा।

रुड़ा रुड़ा हर जो सोई तिथमन राजा अवन कोई अण कारुड़ो तुम सुनो हर बसे मन माहे गुरपुर।

जाय अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हमें ममता दूर करे। काम क्रोध अहंकार नवारा गुर के शब्द सो समझ परी खिंथा झोली परपुर रेहा नानक तारा एक हरे। साचा साहब साची नाई परखे कुरखी बात खरी उदों खपर पंच पू टोपी काया कड़ासन मन जा गोटे। सत संतोख संजम है नालो नानक गुरमुख नाम समालो कंस गुप्ता कंस मुक्ता कंस अंतर बाहर जुगता। कंस आवै कंस जाए कंस उतरै पवन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सुयुगता। मनमुख बिन से आवे जाए नानु गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपण खादा क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल।

ज्ञान की मुद्रा कवन कथी अले घट घट कवन निवासो काल का ठिंगा क्यों जलाई अले क्यों नरपो कर जाइए सह संतो का आसन जाने क्यों छे देव राइए गुर के शब्द होमे बिख मारै ता निज कर हो वै वासो जिन रज रचिया ते शब्द पछाणै नानक ता का दासो कहां ते आवै कहां जावै कहां हे रहे समाई एसो शब्द को जो अर्थावै तस गुर तल न तमाई को तत्ते अवगत्ते पावै गुरमुख लगे प्यारो आपे सुरता आपे करता कहो नानक विचारो हुक्मे आवै हुक्मे जावै हुक्मे रहे समाई पूरे गुर ते साज सकमावै गतम शमदे पाई आद को अब समाद विचार कथियां ले सुन निरंतर वास लिया।

गुरमुख पांदु सिंध बदाता है, लंका लूठी दैन तो संताप है, रामचंद मारियो अह रावण। भेद भविखण गुरमुख पर चैन, गुरमुख सायर पाहण तारे, गुरमुख कोल तेती सौधारे। गुरमुख जूखे आवण जान, गुरमुख दरग पावै मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण। गुरमुख लागै सहि ध्यान, गुरमुख दरग सिवत समाए, नानक गुरमुख बंधन पाए। गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द चलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए। गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख साचो ना पद उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोची होए।

जा रहा है। शब्दो बसे सचो अंतर हिया तन मन सीतर रंग रंगिया काम क्रोध अगण निवारा नानक नदरी नदर प्यारे कवन मूल चंद हमें कर छाया कवन मुख सुन तपे तपाया कवन मुख काल ज्योत नर है कवन बोधो गुरमुख पत्र है कवन जोधो जो काल संघारा है।

सोई, पवन का वासा सोन नवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शावदो कट मैं वसा, विचो भरम गवाए, तन मन नरमल नरमल बाणी, नामो मन वसाए, शब्द गुरु पव सागर तरिया, एतो तो एको जाना है।

तपता पै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें बो समर्थ शास्त्र जी, कर करे आखट कर्म करंता, से भगत पले जन नानक।